अग्नियों से शेरा अग्नियों सतना तो सो अनस्त सिक्तन करण के अनल सनेस्त सारण